0: रेडियो सारंग 107.8 FM जय हे
1: गुरु बलाई, रेडियो सारंग 107.8 FM रंग रंग दा बदक इत्ते तुलु प्रसार।